सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों से नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला का यह शब्द है। इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ

जब तेरा फिर ही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ हो? श्रृंगार का की मतलब है जब फिर ही नहीं, फिर वाली ही नहीं, तो तेरे श्रृंगारा का की मायना? श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं, तो बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नू कहंदे हन दर घर ढोई नाल है। उसनू ना दर घर दे विच किते भी कोई ढोई नहीं हुंदी। दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच कोई झूठी हुंदी है, क्योंकि उसने किस लिए श्रृंगार किया है अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है, सब गुण तेरे गल चुके हैं, अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी, तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं, फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, एकाया, जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई? फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तो वाहिगुरु तो, अकाल पुरख तो, आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असी सुनिया सी ना, हर बिसरत तेरे गुण गले। जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं, अंदर टोटल रॉटन हो चुका है, तो तेरे बाहरले श्रृंगार, बाहरलिया सुगंधियां, बाहरली सजावट, मांग छपाया होया संधूर, पहने हुए गहने, कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ये छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं, रटन हो चुके हैं, अंदर तेरी दी ए तस्वीर है, तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ? गुण गल चुके हैं। अज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना, विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री, ऐ जीव स्त्री, उस पिर ने तेरे बाहरले श्रृंगार नू नहीं देखना। उस पिर नू तू श्रृंगारी चंगी लगती है, और जिन्नी देर तक तू श्रृंगार नहीं लेंदी उतनी देर तक उसने तेरे नजदीक नहीं आना। पर पहला तू ए ते समझ कि ओ किस चीज दे नजदीक आंदा है, किस चीज दे नाल ओ वस आंदा है। गुण तेरे गले पे हैं, ते महाराज जी दी बाणी दी पंक्ति सुनो हुण।

तेरे ने ता मिलना है जे गुण होन, वो तेरे गल चुके हैं। ये शरीर मेरे इस जग में है कि क्या तुझ कर्म कमाया, तू कुछ भी नहीं कमाया, उस वाहिगुरु नालों दूर होके हर बिस्तर तेरे गुण गलिया, शरीर नू तू समझा ही नहीं, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन मंदर वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन दुर्लभता वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन सब तो उत्तम अते श्रेष्ठ होने वाले, इस दे विच गुण ही नहीं हन कि इस नू सरोवर आख्या जाए, सारे गुण तै गाल लए हन लोभ नाल, लालच नाल, हंकार नाल, क्रोध नाल, काम नाल, इत आदि चीजा दे नाल तैं सारे गुण गाल लए हन। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टहले, सारे गुण तै गाल लए हन, ते गुणा तो बिना तो वह फिर मिलता ही नहीं है। कहते हैं जे गुण हो वंता फिर मिले, अपने दिल की तख्ती उत्ते इसनू नोट कर लो, हिरदे उत्ते इसनू उकर लो, इसनू लिख लो कि अकाल पुरख वाहिगुरु की भक्ति जो है, अकाल पुरख वाहिगुरु की जो प्राप्ति है, वो गुणा दे उत्ते आधारित है, और वो गुण जिन्हां की कोई कीमत नहीं है, वो बाजार विकदे नहीं हैं, तुसी खरीद नहीं सकते, अमुल गुण हैं, अते अमुल गुणा दा तू व्यापार नहीं कीता, अवगुणा दा तू व्यापार कर दी रही है, अवगुण तू सिख दी रही है, लेकिन वो ते अमुल गुण हैं, अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार। कहते हैं

इसका अर्थ हर गुण गंफो, गंफो मैंने माला प्रभु, हार प्रभु, गुंदो केंदे हर गुण हरि दे वाहिगुरु दे गुणा दी माला प्रो के गल दे विच पहन लो। कितना पवित्र, कितना उच्चा सुच्चा बाबा जी का उपदेश है। अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती करनी है, भगती दे विच वख वख स्टेजेस हैं, वख वख स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जिथे सुरत शब्द का समेल हुंदा है, सुरती दे नाल ध्यान दे नाल अपने अंदर उस परम जोत नूं अनुभव किया जाता है। सुरती दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नाल लिव लगाई जाती है, पर असी की उस हुणे ही उस अवस्था च हां कि असी कर सकांगे। साडा तो मन जिहड़ा असी पाठ करन बैठांगे तो इधर उधर खिंड जाएगा, वो एडवांस लैवल है। भगती दी एक स्टेज दे विच ज्ञान बड़ा परिपक्व हुंदा है, गुरु दा ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, तपां दा तप है गुरु दे ज्ञान नूं अपने अंदर उतार लेना, गुरु दे ज्ञान नाल अपने जीवन नूं अपने विचारां नूं भर लेना, अपने विचार अपने ना रहन, सिर्फ गुरु दे विचार ही विचार साडे अंदर रह जाण, अते उन्हां विचारां नूं एक्सरसाइज करनी, ये भी एक मंजिल है। तो अलग अलग अवस्थावां हन। दास तो अज भी पुछया गया कि यह सब कुछ सुनिया है पर असा हुण की करना है। असी हाईएस्ट लैवल तो ते आरंभ कर नहीं सकते कि बहुत कोई उच्चे अभ्यास की गल की जाए कि सुरती नूं दसन द्वार च किवें टकाओ, त्रिकुटी च किवें टकाओ, वो ते काफी सारी अवस्था बनन तो बाद काफी सारा सिमरन अभ्यास बोल के करन तो बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो परिपक्व हुंदा है तो फिर असी उस अवस्था ते जाने। सब तो पहला ते सानू भगती करन दे वास्ते जेड़े जरूरी गुण हैं उही धारण करने पैणगे ते उही सिखने पैणगे। जे उठना बैठना ही नहीं आता, गुणा का भाव उठना बैठना ही नहीं आता, खाना पीना ही नहीं आता, बोलना चलना ही नहीं आता, तो गल्लां असी करिए बहुत डीप लैवल दियां, ब्रह्म ज्ञान दियां, सुरती दे अभ्यास दियां। सुरती दा अभ्यास किवें हो सकता है, सुरत शब्द का अभ्यास किवें हो सकता है, अंदर वो इतनी सूक्ष्म वस्तु

है हर जी सूक्ष्म अगम है कहो कितविद मिलिया जाए। वो इतना सूक्ष्म है, मत साड़ी इतनी मोटी है कि जिसनु उठना बैठना नहीं आंदा, ओ मोटी मत ओ सूक्ष्म वस्तु नु एकदम किस तरह नोटिस कर लेगी, किस तरह उसके नाल जुड़ जाएगी, जिसका ना कोई रूप ना रेख ना रंग आकार शकल कुछ भी नहीं है, असि उस दे नाल किवें जुड़ सकते हाँ जबकि असी सामने जींदियां चीजां दे नाल सही तरह जो है इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब सानू उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना ये तमाम जीवन दे विच जो वर्तों च लियाउण वाले शुभ गुण हन अगर यही नहीं आंदे तो सब तो पहला सानू वो गुण सीखने पैणगे। बाबा जी बाणी दे विच आखदे हन निर्गुण राम गुणे वस होए, उसने जिथे गुणा दी धरती तैयार है उथे वस आना है, उथे उसने अपीयर होना है। निर्गुण राम गुणे वस होए, ते तेरे गुण गल चुके हैं किवें आवे तेरे नेड़े, तू जो मर्जी कर ले, पहला वो शुभ गुण धारण कर, शुभ गुण सिख। महाराज जी बाणी दी पंक्ति इस सब्जेक्ट दे उत्ते एक एक जो आप जी नूं सुनावांगा वो हीरे लालां दे विच जड़न वालियां पंक्तियां हन। कहिंदे हन सुहागणी शिंगार बनाया गुण का गलहार, सुहागणा ने रब दियां सुहागणा ने कहिंदे अपने आप नूं सजा लिया कादे नाल, गुण का गलहार गुणा दा गल दे विच हार पहन लिया, गुण ही गुण हन, एक भी अवगुण नजर नहीं आता उन्हां दे अंदर, एक भी अवगुण नजर नहीं आता। जब तक एक भी अवगुण है उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने नजदीक नहीं आना। और आप जिनू एक लाइन होर बहुत जो गहरी है बहुत डूंगी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, वो भी सुनावा। लोग नाम दी गल करते हैं, नाम दी महाराज जी आखते हैं नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना, नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना। और हुण पंक्ति सुनो, क्योंकि मेरी आदत यह है गुरु बाबे की कृपा है कि जो भी लफ्ज आखना है वह गुरबाणी चो आखना है, बाणी चो बाहर कुछ नहीं। महाराज जी आखते हैं नाम भी जे गुण नहीं हन तो मिलना नहीं है। बाणी की पंक्ति इस तरह है, कहते हैं गुण ते नाम प्राप्त होए, गुणा तो ही नाम की प्राप्ति होनी, जे नाम दे योग ही नहीं हो, जो गुण ही नहीं हन जो नाम संभाल सकन नाम समझ सकन, जो गुण ही नहीं हन ते नाम भी नहीं प्राप्त हो सकता। और नाल ही एक होर इंटरेस्टिंग गल आखी है कि नाम प्राप्त करन दे वास्ते गुण चाहिदे हन, नाल ही आख्या है कि नाम प्राप्त करन दे वास्ते अपने आप नूं मारना पैंदा है, आप मारे तां पाए नाउ, दो गल्लां महाराज ने आखी, आप मारे तां पाए नाउ। एक नाम प्राप्त इस तरह हुंदा है कि अपने आप नू मार ले, अपने आप नू मारन दा मतलब अपनियां तमाम अवगुणा वालियां आदतां तमाम अवगुणा नू मार ले, अपने आप नू मारन दा भाव यह है, अपनी उस होमे नू मार ले, उस जिद नू मार ले, उस हठ नू मार ले, उस कठोरताई नू मार ले, उस क्रोध नू मार ले, जिसनु मारन तो बाद नाम ने प्राप्त होना है। अते कहिंदे हन सब तो वड्डा गुण ही यह है, गुणा दे विच्चों सब तो वड्डा गुण यह है कि अपनी होमे नू मार लै, अते ओ गुण जदों तुहाडे पास है तां तुहानू नाम दी दात प्राप्त होएगी। भोलिया होमे सुरत विसार, कहिंदे ऐ भोले इंसान होमे वाली सुरती नू विसार दे, होमे मार विचार मन अपने मन च विचार होमे नू मार, गुण विच गुण लै सार, कहिंदे गुणा विचों गुण सारे गुणा विचों जो सब तो वड्डा गुण है वह कहिंदे होमे नू मारन दे विच है, कहिंदे उस गुण की खबर लै, उस गुण की सार लै, कहिंदे गुणा तो बिना अकाल पुरख वाहिगुरु ने तेनू मिलना नहीं है। और तेरे गुण गल चुके हैं, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, गुण तेरे गल चुके हैं, सब तो वड्डा अवगुण है होमे दा, अते होमे दे नाल अत्यंत किस्म दे होर तेरे अंदर अवगुण हैं, कहिंदे हैं अवगुणा दे नाल तू भरी पई है, किस तरह तेनू मिलेगा।
गुण तेरे तमाम डल चुके हैं, अवगुण ही अवगुण तेरे अंदर हैं। ते ऐ जीव तू सुंदर बनता है, तू सुंदर सुंदर सुगंधियां लगाना है, तू रस भोगता है, स्वाद मानता है, श्रृंगार करता है। इस श्रृंगार का मतलब की होया, जब वो पिर ही नहीं है तो श्रृंगार के लिए उस पिर ने गुणा दे बस आना है, गुण तेरे पल्ले नहीं हन, फिर तो तू दूर है, फिर तो तू सखनी है, फिर तू श्रृंगार करी फिर भी है। इना श्रृंगारा का कोई अर्थ नहीं है। एक दफा वो प्रेम नाल इस पंक्ति फिर सुन लीए, गा लीए।

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नूं, जदों वो पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जाती है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नूं उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई होवे। पर किहड़े किहड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना, इस श्रृंगार बनाओ। ऐ श्रृंगार ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जदों लफ्ज दो गुरबाणी च असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ऐ असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नूं जो महाराज जी ने जोड़िया है उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देण वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नूं देण वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं हां, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते हैं। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नूं हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नूं देख के उसनूं बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछिया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजा नूं एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शन्स दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भगती आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभाअ दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकदा, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनूं अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगंध कसम लाओ महाराज के चरणों च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस होए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना है, वह अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नूं सुपीरियर ना समझना, ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये आदतां हैं, ये सुभाव हैं, पहला ये तारण करने हैं। अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਢਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗਜਾਨੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ,
क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियां च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसीं? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है, उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील संजम सुच, सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नू वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नू सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असी नाले खाई जाने हां, नाले लिखी जाने हां, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही जूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी, कहते पन्न दिती है, ये अवगुण है। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही भी ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है जां नहीं बनाया। खाज अहाज जो गलत मलत है वह असी खाण लग पे, रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं। तुसी कदे सोचो ते सही, वह लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वह बड़े बड़े ओवनस दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वह बहुत मन की शांति चे प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं। पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे, सारे दिन दे थके मंदे, तो उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने वो तैयार किया है, तो असीं बाहर बैठ के उसनू रैलिश करते हैं। किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन। कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा हो कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू यू नो। पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछने लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माय ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग इवन टी फ्रॉम अस, एनीथिंग इवन वाटर। मैं कहा इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोकां दे जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं कहा हैव यू वॉश योर हैंड्स, कहिंदी नो। मैं कहा देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश योर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहिंदी हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट। इस करके मैं क्या मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ए अवगुण है, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ए तमाम पहनना ए सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता। ओहो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई। वो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत। फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगा सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए। पाणा जुतियां नू आखते हैं, कहते हैं दरगाह उसके जुतियां पैंदियां हैं। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो तो तुहाडे उते आ कुछ लागू हुंदा है। फिक्का दरगा सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए उसनू मूर्ख आख्या जांदा है,
سو کس طرح فقہ بول سکتے ہو؟ اے تمام چیزاں نو آلٹر کرنا ہے نا، اینا تمام چیزاں نو بدلنا ہے، یہ سارے شبھ گن اپنے اندر دھارن کرنے ہن، جے گن نہیں ہن تے ون گن کیتے بھگت نہ ہوئے۔ کسے تو جا کے بھگتی دا سوال نہ پوچھنا کہ بھگتی کیویں کرنی ہے، جے اس دی گراؤنڈ ہی تیار نہیں ہے، جے شبھ گن ہی تیار نہیں ہن۔ اج گناں دی گل کیتی ہے، وچ از دا گراؤنڈ ورک۔ کل نو اسی جو من اور آتما دی تھوڑی جی وچار سمرن ابھیاس دی وچار کران گے، آپ جی کرپا کر کے سمے سے آؤ تاکہ کل نو شام دے کیرتن سارے کیرتن کنکلوڈ ہو جان گے۔ تو آؤ پریم نال اس پنکتی نو گاؤ کہ مندہ پھر بن کیا شنگار، پھر اکال پرکھ واہگرو تا نیڑے آندا ہے جے گن ہون، جے او گن تیرے اندر گلے پئے ہن تے او تے تیتوں بہت دور چلے گیا ہے، تے تو اپنے آپ دی جو فلتھ ہے اگلی نس ہے اس نو تو صرف ٹکی جا رہی ہے شنگار کر کے سندر کپڑیاں نال، گہنیاں نال، کاسمیٹکس نال، پرفیومز آد دے نال۔ کہندے ہن اس شنگار دے نال واہگرو نے نیڑے نہیں آنا، کیونکہ اس نو تیری اندرلی حالت دا پتا ہے کہ اوتے ہر بسر تیرے گن گلے، یہ تیری حالت ہے۔ پریم نال گاؤ۔

बहुत पुरातन राग रहे, ऐदावादी ऋषभ संवादी पंचम ने, ये ओडव जाति का राग है भाव, एर अंदर पंच सुरा लगदिया ने।

पड़ा थी। सन्नाटे का मीह नहीं सी पे जगह हूं अग कोई नी डबी कोई नी लकड़ा किते नाल करे पानी किस तरह होए ए बाबयां दे अपने मुखार पिंड दी साखी है। बाबा राम सिंह महाराज बाबे कहन लगे जपना नाम है टाइम इना है नी जिंदगी छोटी है साडी अकला मोटिया नी जपांगे किस तरह। बाबे कहन लगे इंज करने आ एवें अद्धी की दिहाड़ी कर लिया करिए। बाबा जी भाई लालो दे घर दे जन्मदिन से होना इस कराने विचों तन भाई लालो जिदे घर गुरु नानक साहब पंजी दिन रहे जदो पहली उदासी तुरे मरदाने ने कहा किधर जाना कहन लगे तुरे आ चल गरीब नवाज इनिया टारियां कहंदी पे ठकारे ना वल सानू जिदी तलाश है जदो मंजिल आ गई पता लग जाएगा गरीब नवाज किधर तुरे जाते हो ते नेरा पै गए मरदानिया ऐसे रब दे प्यारे को जा रहे हैं ओदा ते मेरा सरबंध है। हन गुरु नानक पातशाह जदों ए तुरे तो अज फरीद साहब करो चले अग नहीं मिल रही दूरों एक देखिया मकान विच लोह है रेतले टिब्बे सी अजमेर शरीफ वल एक बहुत वड्डी अटारी ते विच जग रही सी लंब। फरीद साहब ने जाके दरवाजा खड़काया गृहस्थियो भलियो लोको वो कंजरी दा घर सी बेसवा दा बेसवा कहण लगी फरीद साहब ए ते बड़ी वड्डी हस्ती है पहुंचने वाली और पहुंच चुके ने ओ भी उसे पीर नू जाके जपदी सी मुदरे तो बाद दरवाजा खोल जी कौन मैं फरीद किस तरह आए हो ये कंजरी दा द्वारा है बेसुबह कहने लगी मैं अग लेना है अग दे सकनी कहने लगी भला वेखा फरीद पक्का भी होया कि नहीं कहने अग ते दे दांगी पर इसकी कीमत देनी पेगी। फरीद कहना जो मर्जी ले ला मेरी जिंद भी हाजिर है अग दे दे कहने अख दा डेला एक दे दे लिया फिर कोई चीज उन्हें कर दिती फरीद ने अख दा डेला कड के तली ते रख दिता तो उत्ते पट्टी बन ली। कंदरी कहन लगी या अल्लाह तेरे जपन वाले कमाल मुर्शिद वाले ने उन्हें डबी दिती आन के लकड़ा बालियां ते मुर्शिद नु इशनान कराया मुर्शिद होए खुश फिर गुरु सिख दे उत्ते खुश हो जाए ते कोई फिर चीज रखदा गुरु कोल सती प्रकार दा की बल्कि रिधियां सिधियां दे दिंदा लैसा हम पाई जा तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अज जदो इनी कृपा होई बड़े प्यार नाल मुर्शिद नु किया महाराज सेवा कहन लगे फरीद तेरी सेवा पूरी होई है अज किस तरह पानी गर्म कीता जी आप जानी जान।

अख ते पट्टी क्यों बनी हो? तो फरीद कहन लगा आ गई है, इस करके पट्टी बनी है, आ गई अख। कहंदी जिदे जी चीज चले जे तो वापस आ जाए, ओनू पट्टी बनन दी की लोड़? पट्टी खोल, जो खोली ते अख नौ बरना, चरण फड़ ले, फड़ ले चरण। बाबा नंद सिंह महाराज, मैं इको बचन हुण करना है, बाबे दिहाड़ी करनी है पर किस तरह? बाबा जी गए दिहाड़ी करन ते कुछ लेट पहुंचे, लेट पहुंचे पर उन्हां वक्त ज्यादा लाया। बाबे कहन लगे मनुखा जन्म है इंज ते इंजी चले जुए, पेट बदले ते दिहाड़ी बहुत है ते वक्त मिलिया कोई नहीं, मालिक दी ड्यूटी पूरी देनी है, जिन्हें जब पूरी किरत ना करेंगे इन्हें पैसे नहीं देने। बाबे कहन लगे आज तो रोटी खानी नहीं, मंग के खा लिया करांगे, गृहस्थी थोड़े ने। बाबा नंद सिंह जी जदों तुरे अमृत वेले, एक जिमीदार दा घर सी, दरवाजा खड़काया, जिमीदार दे घरों छा वेला अपने मालक नूं खवा रही सी ते हड़ी तोरना सी, दरवाजा खड़काया, भाई एक प्रशादा दियो। ऐसे महापुरख मंगण दी भी जांच नहीं सी, शादा दियो। वो गृहस्थिन कहन लगी कोई मंगण दा तरीका मंगते दा, प्रशादा दियो, ना कोई गल ना कोई बात। दरवाजा खोलिया ते कहन लगे प्रशादा तेरे वास्ते, जिन जाके दो बिगे पैली बोनी है ओनू खवावा पहला के तनु हटे कटे नू, तो जवान हैगा आप किरत कर जाके। बाबा जी कहन लगे लान तो मना तेनू, सवेरे सवेरे गृहस्थिया दे बचन सुने नी, एक प्रशादे बदले। कहन लगे खाना ही नहीं अज तो, जे आप निरंकार खवाएगा तो खाना नहीं तेने। बाबा नंद सिंह जी तुर पे ते जिमीदार कहन लगा पागा वालिए, मंगन गया सो मर गया, मंगल मूल न जा, तेरे दरबारे ते आया सी की एक फकीर नो प्रशादा दे दिंदी, जा नसके जा। वो जटी जो नसी ते कहन लगी फिर खड़ो भी जा लीला प्रशादा। बाबे नंद सिंह जी कहन लगे हाली मैं मरिया नहीं जीवना, मेनू प्रशादे दी नहीं लोड़। बाबा जी फिर कहन लगे इस गल नो ए हुई है किथे चुप करके बह जा। बाबा जी एक कमरे च नाम जपना शुरू कीता, हलाम होया नंद सिंह रोटी खादी। बाबे अगो नेरे चो कहन लगे किरत मैं करनी नी, मंगना मैं नी, रोटी कौन मेनू खवाए? अगो आवाज आई अज तो रोटी तेरी 5 मिनट पहला आ जा करेगी इथे, तू जपी चा। धन गुरु नानक पातशाह ने फिर रोटी पचाई, रोटी खादी। बाबा नंद सिंह जी कहन लगे की अजे पिंड विच रोटी खवाती, स्वाद ते ताजा, किसे जंगल विच रोटी भेजे? भगत फिर रब दी भी परीक्षा लैनी शुरू कर दे। फिर ए मिंट कुमरी काड़ा मंडी, बाबा नंद सिंह जी गुफा दे मैं दर्शन कीते ने। बाबा जी 26 साल उथे नाम जपया, जिदन पहले दिन पहुंचे ते गुफा दे विच जान लगे ते रोटी ते पचाउनी सी ना, चुके इकरार कीता सी 5 मिनट पहला पचाया करो। काड़ा मंडी दे ए बहुत वड्डी कणक दी मंडी सी, 5-10 हाली, जिमीदार गड्डा दे उत्ते गड्ड उथे कलार दितियां ते रोटी परोस के बाबा नंद सोरां दे वास्ते जंगल च आई। लै नंद सिंह रोटी खा, बाबा जी कहन लगे एथे रोटी? कहन लगे असी ते कणक देण आए सी, असी कह कोई बेंगम है, इनू भी रोटी खवा दी। बाबा फिर मन दी अखां नाल दर्शन कीते ते गुरु नानक सी आ। बाबा ने फिर फड़ लिया, फिर उस तो बाद फिर बाबा नंद सिंह जी दा यकीन पूरा बैठा, फिर आप जपया ते सारिआं नूं जपाया तेरे दर तों।

0: सज्जन सब सज्जन एक नो सज्जन बना ले सारी दुनिया एक वाल पिठ कर लेगा दुनिया वैरी बन जाएगी एक सज्जन सब सजना एक वैरी
1: सब
0: तो रानी तारा ने सोचिया मेरी गुरु नालो ना टुट राजे ने पूछा रानी है किथे गई स कह लगी किधरे भी नहीं गई आखो श्री वाहेगुरु राजा खामोश हो गया दिन चढ़िया कचहरी चला गया रात पई वापस प्रसाद पानी छक के राजा फुलां दी सेजा उते आराम कर रहे हैं ते रानी तारा पति जान के मुठी चापी कर रही ते इस उड़ीक विच भी है भी राजा सो जाए ते मैं सत्संग विच पहुंचा पर अज राजे ने भी सोचिया भी मना सोना नहीं वेखना है रानी जांदी किथे राजे ने अखां बंद करके घुराड़े मारने शुरू कर दिते बनावटी घुराड़े पौड़ी पाड़ी राणी ने सोचे मना राजा तो सौ गया है उठ जिथे अमृत वस रहा है उथे पहुंची राणी तारा उठी खड़ावा पाइया चोर दरवाजे थानी बाहर निकल गई फिर राजा तो जागदा ही पिया होर तराती उठ के पिछे चलिया तरल जोहानी अद्धी रात दा समय है अगे अगे राणी जा रही है पिछे पिछे राजा राजा सोचदा मना राणी नू डर भी नहीं लगता इहदे अंदर भै ही नहीं कल्ली तुरी जांदी पर डर तां उसनू लगता है जिन्हें निर्भव नू नहीं जपिया ओनू भै जापदा है पर जिसने निर्भव वाहिगुरु नू जप लिया है

कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। तन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगा तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो, इहदे वर्गा। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया ओदे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द विच

0: सब तन का गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा तू तन तन सुन करे
1: मैं तुझ बिन अगर ना कोई तुझ आपे

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

और इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम, जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार, जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है, ओ खुशकिस्मत। गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रसता है, पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती बिन अमलां तों खीवे, उन्हां नूं झूठे अमल दी लोड़ ही नहीं। जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती बिन अमलां तों खीवे, अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे। फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे। बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरां वाले महापुरुष फरमांदे सन, दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। पहला तो दीवा बनाइए, फिर उसनू पकाइए, फिर उहदे वास्ते तेल सरसों नूं नपीड़ के करना पैंदा। सरसों कितों उगदी, बड़ी मेहनत। फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा, वट दी लोड़, उहदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी। फिर वट भी लगा रखी है, हुण जगाइए भाई दीवा। ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा? प्यार दे नाल, प्यार दे नाल दीवा जगेगा। जो भी जग गया दीवा, फिर लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे। आखो श्री भाई, सारे आखो भाई, सरत माई भाई, जे मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो, आओ भागा वाले हो, अपनी रसना पवित्र करो, सेवक दे कन सफले करो, प्यार नाल आखो सतनाम। धन्यवाद। जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो, और गुरु जिसने सानू सबो कुछ दिता है, साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली। बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार तुसी बाहर चले जाते हो, ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते ने। कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है, आखो सी हो सा भी कोई बापू, दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाइया लिया के दें, खिलौने लिया के दें, तरह तरह की चीजा लिया के दें। बेबे साडा भी कोई बापू, वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है। पर वीर हुण ना जाए, हुण ना परदेसां नूं जाए। तो प्यारी सत्संगत परवकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता। पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारियो, पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती भर जाती है। पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, रब आप ही पालसी सारियां नूं, जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन, करा की मैं दुआ दिला रहा। बेबे मेरे निरंकार का बनाया संसार, दुनिया दुखी है, काम क्रोध मोहंकार की अगली साधी है। बेबे मेनू जान दे ना बिठा, इतने संसार रोगी हो चुका है। ए संसार रोगी नाम दारू, नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो, यही दात आती है। आए कर प्यार नाल पढ़ो, पहले सेहत बोले तो पिछे सारी सही संगत गढ़ के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो। बाबा जी बचर करते सन, जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं ला जाता, तो जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता,
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر نازل دے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری سنگت پہلا سیو بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک